चार को चाचा गुरुदाने स्वर भाई जानी हूँ ना जान सब जस बखता माँ पाती ते सही आती ने ना ना

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: रेडियो सैलून सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलून समाचार को सहयात्री।

0: अनुरोधक दीप जनवन कार्यालय दोलखा।
1: सामुदायिक पहुँचका लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।

नमस्कार रेडियो सैलौं सामुदायिक एफएम बैठी में थोपलो 7 MHz मति प्रसाद साहब आज विक्रम संवत 2083 अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष सन 2026 जून 1 तारीख ज्येष्ठ 18 गते सोमवार पारेवा तिथि अब स्तुति करूं।

कपना बढ़ो सुस्ताई सुस्ताई सहजा भौतिक जगत में नहरता नारी ले प्रगति पथ को।

मेरो नाम सूर्यबहादुर थापा, भिनपा तीन तारथलीबाट म हनुमान चालिसा रेकर्ड गर्न चाहन्छु। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनम गुरु सुधारी वर्ण रघुवर विमल दश जोदायको फलचारी बुद्धि हिन दोन जानकी सुनिर पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मई हरहु कलेश विकार। ओ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिश तुम लोग उजागर, राम दूत अदल दबल धाम, अंजनी पुत्र पवन सुत राम, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार स्मृति की संगी, कंचन वर्ण विरास वेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ बर जाओ ध्वज विराजयी, कांधे मुझे जने साजयी, शंकर सुबन केसर नंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, पर्व चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप दरी से दिखवाया, विकट रूप बदल गजर आया, हेम रूप दर असुर संहारी, रामचंद्र की काज संवारी, लाए सजीवन लखन जी आये, श्री रघुवीर हरचूर लाए, रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतम भाई, सहज बदन तुम्हारे जस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे, सनकादि ब्रह्मादि मुनिषा, नारद सारद सहित ऐसा, हेम कुबेर दीपाल जहाते, कवि गोविंद कैसे के कहते, तुम उपकार सुग्री भई किना, राम मिलाए राजपद दिना, तुम्हारो मंत्र भी विषण मान, लंकेश्वर भय सब जग जान, युग सहस्र योजन पर भानु, लील्योताई मधु फल जानु, प्रभु मंदिर का मेली मुखमाई, जल्दी लागी गए अतर जनाई, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, राम द्वारे तुम रखवारे, वतन आज्ञा बिना पैसारे, सब सुखलाई तुम्हारी शरणा, तुम रक्षे काम को डरना, आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोग हागते कापे, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हर सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कमर वचन ध्यान जलावे, सब पर राम तब श्री राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, अवरो मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारो जुग पड़ताल तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगद जियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नमन निधि के दाता, असवर दीन जान की माता, राम रसायन तुम्हारी पासा, सदावर रघुपति के दासा, तुम्हारी भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिछरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त खाई, और देवता चिदन धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई, संकट कटे मिर सब पीरा, जो सुमिरई हनुमत बलबीरा, जय जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सतबार पाठ कर कोई, छुटी बंदी माँ सुख हुई, जो ये पड़े हनुमान चालीसा, हो ये सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सनाहरी चेरा, किजनाथ हृदय मोहडेरा। ओम पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसुंधरा शिवा पर रामचंद्र शंकर जी बाजा। जय हनुमान, जय बजरंगबली।